0: अयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नागरिक समस्यानां स्थायि समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम्। विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धतां भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः। आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः। अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्। जलवायु रक्षणाय पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। फिजी गोष्ठ्यां भारतस्य स्पष्टः सन्देशः। रसायन क्षेत्रे अभूतपूर्व शोधाभ्याम् फ्रांस जापान देशयोः वैज्ञानिकाभ्याम् नोबेल पुरस्कारः समुद्घोषितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याम् अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् दूरदर्शिन्या नीत्या कठोर परिश्रमेण च भारतं 47.2 वर्षे विकसित राष्ट्रस्य स्वकीयं स्वप्नम् अवश्यमेव पूर्णं विधास्यति। वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्व नागरिकाणां समस्यानां समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् पुरा यत् भारतं नीतिगत शिथिलतायाः कृते चर्च्यते स्म तत् अद्य स्वकीयायाः वर्धमान शक्तेः दृढतायाः च कृते जगति विश्रुतमस्ति। गतेषु द्वादश वर्षेषु देशस्य स्थितिः सर्वथा परिवर्तिता। पूर्वतनस्य आयात निर्भरता युगस्य स्थाने अद्य भारतम् उत्पादन सामर्थ्येन निर्यात क्षेत्रे नूतन कीर्तिमानानि रचयति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् 25.5-25.2-26 स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं कृषिक्षेत्रे उच्चतमस्य अनवरत विकासस्य साक्षीभूतम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् ईदृशं युगान्तकारी परिवर्तनं तदैव सम्भवति यदा संकल्पः सुस्पष्टः नीतयः च सुनिश्चिताः भवन्ति।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। माँ भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् अयं समयः भारताय बृहत्तमानां लक्ष्यानां निर्धारणाय अत्यन्तम् अनुकूलः अस्ति। स्वकीयां समग्रामपि राजनैतिक यात्रां देशवासीनाम् अनन्य विश्वासाय समर्पयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् वर्तमान शासनस्य नीतयः सर्व नागरिकाणां समस्यानां स्थायि समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए। और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: भारत स्विट्जरलैंड देशयोः द्विपक्षीय वार्तायाः अंकीय प्रौद्योगिकी नवीन ऊर्जा आर्थिक विकास क्षेत्रेषु च गभीरा विचार विनिमय प्रक्रिया सुसंपन्ना। उभयोः देशयोः प्रतिनिधिभ्याम् अनुसंधान नवाचार क्षेत्रयोः सहयोगाय प्रलेखेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यमुद्देश्यं तावत् द्विपक्षीय व्यापारवर्धनम्, स्वच्छ प्रौद्योगिक्याः आदान प्रदानम्, उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सम्बन्धानां नूतन शिखराणां प्रति नयनञ्च अस्ति। जागतिक भू राजनीतिक अनिश्चिततानां मध्ये वर्धमानायाः मुद्रास्फीतेः नियन्त्रणाय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन प्रायः 3.5 वर्षानन्तरम् अद्य मुख्य नीतिगत अनुपातः 25 आधाराङ्कैः संवर्धितः, येन सः 5.5% प्राप्तः। द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः घोषणां कुर्वन् रिजर्व वित्त कोषस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवोचत् यत् मौद्रिक नीति समित्या सर्वसम्मत्या नीतिगत रेपो अनुपातस्य 25 आधाराङ्कैः संवर्धनस्य निर्णयः गृहीतः। रिजर्व वित्तकोषेन वर्तमान वित्तवर्षाय वास्तविक सकल स्वदेशीयोत्पादस्य वृद्ध्यनुपातः 7.1% भविष्यतीति अनुमानितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली आरक्षिदलेन कांग्रेस नेतृभ्याम् राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्राभ्याम् विरुद्धम् अनधिकार प्रवेशारोपे प्रथम सूचना प्रतिवेदनम् पंजीकृतम्। अभियोगः एषः ह्यः विहिते विरोध प्रदर्शने नवदेहल्यां स्थिते आकाशवाणी भवने अनाधिकृत प्रवेशाय कृतः। इदम् अभियोगपत्रं संसद मार्ग आरक्षिस्थाने सम्बद्ध धारासु पंजीकृत्य अन्वेषणं प्रारब्धम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ह्यः विपक्षीय इंडिया गठबंधनस्य अनेकैः संसत्सदस्यैः संसदः मकरद्वारात् निर्वाचनायोगस्य मुख्यालयं यावत् प्रतिषेधयात्रायाः आह्वानं कृतमासीत्। कांग्रेस नेतुः राहुल गांधिनः नेतृत्वे प्रचलन्ती इयं यात्रा आकाशवाणी भवनस्य निकटे आरक्षिदलेन स्थगिता। तदनन्तरं कांग्रेस नेतारः आकाशवाणी भवने प्रविश्य तत्र उपवेशन प्रतिषेधनम् कृतवन्तः। फिजी देशे आयोजितायां फ्री कॉप 31 इति पूर्व सम्मेलनोपवेशने भारतेन सुदृढ जलवायु कार्याचरणाय अथ च पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनाय सबलम् आह्वानं विहितम्। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन प्रतिपादितम् यत् वैश्विक तापमान वृद्धिम् 1.5 अंश सेल्सियस मितं यावत् सीमितं कर्तुं पारस्परिक अवबोधे विद्यमानानां भेदानां निवारणं, पूर्व प्रतिबद्धतानां पूर्तिः अथ च लक्ष्य प्राप्तये प्रगतेः द्रुतीकरणं अनिवार्यं वर्तते। सत्रं संबोधयन् श्री यादवेन सामर्थ्य निर्माणस्य अथ च कार्यान्वयन साधनानां समुचित उपलब्धतायाः आवश्यकता प्रतिपादिता। सः उच्च प्रभावोत्पादन जलवायु शमनस्य व्यापक अनुकूलनस्य सहैव जलवायु वित्तस्य अन्य संसाधनानां च प्रभावी वितरणस्य मूर्तरूपाणि उदाहरणानि प्रस्तोतुं विश्वसमुदायम् आहूतवान्। 26th 2000 प्रतिष्ठास्पदः रसायनशास्त्र नोबेल पुरस्कारः फ्रांस देशस्य उद्भट रसायनशास्त्रज्ञाय हेनरी बी कागन महोदयाय तथा जापान देशस्य विद्वद्वराय केन्सो सोआई महोदयाय च संयुक्त रूपेण समर्प्यते। स्वीडिश संस्थया संसूचितं यत् एताभ्यां वैज्ञानिकाभ्यां रसायनशास्त्रे अभूतपूर्वाः शोधाः विहिताः। भारतीय ऋतुविज्ञानेन विभागेन नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुराभ्यां कतिचित् स्थलेषु अद्य अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं व्यञ्जितम् इति वार्ताः।
3: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.
4: Less premium, more bonus, most suitable for your loved ones. RPL Life, nothing better than this.
5: Give your family a secure life with Rural Post Life Insurance. RPLI Life Insurance Policies. Contact your nearest post office today or log on to indiapost.gov.in.
6: തുടങ്ങാം ഇൻവെസ്റ്റിംഗിന്റെ പാഠം.